listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive, Gio Binda.

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: Cool song.
1: Radio Olive par aane wala gaana Cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: Cool song.

Listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
0: रेडियो ओलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर.

0: वाओ।
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
3: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
5: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए, बिकॉज लुलू बिग 5 days डील्स आर हियर। 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स। और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स। विजिट लुलू हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com। लुलू बिग 5 days डील्स, मिस किया तो डील गई।
3: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Awesome।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: आई रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह, स्टे ट्यून्ड।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलू बिग 5 days डील्स आर हियर। 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स। और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स। विजिट लुलू हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com। लुलू बिग 5 days डील्स। मिस किया तो डील गई।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। रेडियो

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
2: Hi, this is Ajay Devgan.
3: Hi, this is Akshay Kumar.
4: Hi, this is Anushka Sharma.
5: And I'm Ashwin Varsi.
6: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
7: आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
8: सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कव्वाली, फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा, मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली, देंगे ये सलामी चलने को जगह

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू। और शो का नाम है ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। मतलब आपको मेरे चेहरे की ये मुस्कुराहट, ये खुशी देखकर समझ आ गया होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। एक तो सैटरडे है, ऊपर से बहुत दिन बाद आपसे दोपहर में बात करने का मौका मिला है। अदरवाइज यू नो एवरी टाइम आई एम एट मिडनाइट लाउंज। और वीकेंड था, कल फ्राइडे था और मैं शाम को यहाँ पर हैप्पी वीकेंड्स लेकर आई थी। सो सैटरडे है, मतलब अलार्म के साथ एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि आज ब्रेकफास्ट क्या है। लेकिन कतर में एक और चीज रिसेंटली चेंज हुई है, विच इज सुहेल। यू नो 24th ऑफ अगस्त को, यानी कि पिछले हफ्ते ही कतर में सुहेल सीजन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। और ये सीजन अराउंड 53 डेज का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह उठते ही दोहा में स्वेटर पहनने के लिए आपको स्वेटर ढूंढना पड़ेगा, बट येस ग्रेजुअली नाइट्स जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल होने लग जाती है। समर जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग जाता है, बट अभी तक ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। सो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि हम कतर में वेदर को कितना इमोशनली फॉलो करते हैं। बाहर जाना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एसी के बिना सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। व्हाट्सएप पे बताओ कि कतर में आपको एक्चुअल विंटर कब फील होता है। मतलब मुझे तो सीधे दिसंबर और जनवरी में ही फील होता है। सो ये आप मुझे बताओ, फाइनली बालकनी में जो चाय पीने वाला मौसम है आपको कब से फील होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट्सएप करो फटाफट और बताओ मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: दिस इज दीपिका पादुकोण।
4: दीपिका पादुकोण
3: रेडियो ओलिव 106.3
0: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: So, अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी लाइफ एक किताब होती तो उसका टाइटल क्या होता? मैं अपनी बताती हूँ, मेरी तो शायद होती कि एवरीथिंग इज फाइन, बस थोड़ा सा मैनेज करना बाकी है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और ये जो टाइम है स्पेशली यू नो जो मिड मॉर्निंग वाला टाइम होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ना बड़े एक्टिव होते हैं। कोई ड्राइव कर रहा होता है, कोई अपने काम से फ्री होकर यू नो किसी मीटिंग के लिए जा रहा होता है, और आज तो सैटरडे भी है तो इतना ज्यादा कुछ हेक्टिक है नहीं, आई नो दैट। सो आज कतर नेशनल लाइब्रेरी में भी एक इंटरेस्टिंग सा सेशन चल रहा था, एंड मतलब चल रहा है, शाम को होने वाला है, जिसमें यू नो एक ऑथर है जो बात करने वाले हैं लेट्स टॉक अबाउट लाइफ पर। बुक चैट है जिसमें शाम को 4 से 6 बजे तक होने वाला है, और ये आई वॉज वंडरिंग कि ये सेशन जो है रिफ्लेक्शन, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और इन सब पर होगा। लेकिन हम अपनी लाइफ का एक छोटा सा बुक क्लब अभी यहीं बना लेते हैं ऑन एयर। सो व्हाट्सएप पे मुझे सिर्फ अपनी लाइफ बुक का एक टाइटल भेजो, फनी भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, ड्रामेटिक भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। बाय द वे, मैं बेस्ट टाइटल्स रेडियो पे रीड करने वाली हूँ। सो आज का क्वेश्चन है, आपकी लाइफ की किताब का नाम क्या होगा? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,

मेरी जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

एक कन्फेशन करूं, कभी कभी किताब पढ़ने के बाद मूवी देखो तो लगता है कि अरे यार ये कैरेक्टर इतना डिफरेंट क्यों है। सो वोग इंडिया ने रिसेंटली इंडियन फिल्म की एक लिस्ट शेयर की जो बुक से इंस्पायर्ड है, और लिस्ट में ओमकारा, हैदर, टू स्टेट्स, आयशा और बहुत ऐसे सारे मूवीज के नाम थे। और यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बुक में हम कैरेक्टर्स को अपने इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं और मूवी में डायरेक्टर जो बोलता है वही होता है, नहीं नहीं ये फेस नहीं ये फेस दिखाओ। तो आज बैटल क्या है, बुक वर्सेस मूवी, टू स्टेट बुक या मूवी, हैदर बुक का आइडिया या फिर विशाल भारद्वाज का वर्जन, और आयशा की अगर मैं बात करूं तो जैन ऑस्टिन या फिर बॉलीवुड वाली आयशा मूवी। व्हाट्सएप पे सिर्फ एक वर्ड भेजो, बुक या मूवी, क्या आपको ज्यादा पसंद है। 3311063 इज माई नंबर और आप सुन रहे हैं लाइफ मस्त है। और अगर कोई मूवी है जिसमें आपको लगता है कि फिल्म ने बुक को बीट कर दिया सो वो नाम भी आप मुझे बता सकते हो। वी विल यू नो सी कि क्या डिफरेंस था और मैंने क्या वो किताब और मूवी दोनों में से कुछ देखा है या पढ़ा है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: All that you need.

यार फैशन की दुनिया भी ना कितनी कमाल है। आप एक शर्ट पहन के बोलो बस कैजुअली रेडी हुई हूँ और सामने वाले को पता है ही नहीं कि आपको रेडी होने में 1 घंटा 40 मिनट लगा है। और फैशन में एक बड़ा ट्रेंड ये भी है कि एफर्टलेस जो ड्रेसिंग होती है ना वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है। मतलब लोग ऐसा लगे जैसे बस उठ के आए हो और नेचुरली स्टाइलिश लग रहे हो, हेयर थोड़े से मेसी है, शर्ट थोड़ी सी लूज है, शूज़ एकदम सिंपल, स्नीकर्स कंफर्टेबल। और रियलिटी इस एफर्टलेस लुक को एफर्टलेस बनाने में पूरी मेहनत लगी है। सो आई वाज थिंकिंग कि भाई फैशन जो है धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो मुझे बताओ आपका आई डोंट ट्राई लुक क्या है। मतलब लड़कों के लिए तो इट्स वेरी इजी, यू नो, टी शर्ट पहना, जीन्स पहना और उनके फेवरेट जो एक स्पोर्ट शूज होते हैं उनके पास वो पहने और निकल गए। लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, कभी कुर्ता और मैसी बन बनाया वो लेजेंडरी लुक के लिए, कभी यू नो पोलो टी शर्ट्स और नॉर्मल सा एक पैंट पहन लिया विद द गुड हील्स और उसमें भी वो इतनी क्लासी लगती है। सो काले कपड़े पहन लो और कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये भी कुछ तरह के लोग होते हैं, यू नो ब्लैक उनके लिए फेवरेट होता है। सो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताओ कि आपका लेजी बट स्टाइलिश आउटफिट जो है वो क्या है। आपको लगता है कि यार ये जो है कमाल का दिखेगा, टाइम भी कम है, एफर्ट भी कम लगेगा और इसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास रेडियो।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

So, कतर में ना शॉपिंग लवर्स के लिए अगस्त का ये लास्ट वीकेंड थोड़ा सा डेंजरस है। हालांकि समर शॉपिंग फेस्टिवल जो है वो अगस्त के एंड तक चल रहा है और टुडे इज 29th, राइट, और ये पूरे 31st तक चलने वाला है। और पार्टिसिपेटिंग मॉल्स रेस्टोरेंट में अगर आप 200 कतरी रियाल स्पेंड करते हो तो आपको बहुत सारे कूपन्स मिलते हैं, रफल कूपन जैसे कहते हैं। मॉल ऑफ कतर का फाइनल ड्रॉ जो है वो 31st August को निकलेगा रात को 8:30 बजे, और इसके लिए ना जाने कितने मेरे दोस्तों ने शॉपिंग कर रखी है। और मॉल ऑफ कतर में ना आज लास्ट डेट है वैसे मेगा सेल की, जिसमें 85 ऐसे स्टोर्स हैं जिन्होंने 20-80% तक डिस्काउंट निकाला है। अब असली सवाल ये है कि आप शॉपिंग करने जाते हो, बस देखने जाते हो और घर आ जाते हो, ये सब मैंने कब खरीदा आपको याद ही नहीं आ रहा होता। मतलब शॉपिंग करनी नहीं होती, प्लान नहीं होता, बट दिस 80% डिस्काउंट वाली चीज़ें आप छोड़ोगे कैसे? व्हाट्सएप पर ऑनेस्टली बताओ कि शॉपिंग में सबसे बड़ा झूठ क्या है, बस 5 मिनट देख कर वापस आ जाएंगे? सेल है तो पैसे बच जाएंगे, आप ऐसा सोचते हो, या फिर लास्ट परचेज है, इस पूरे साल फिर कोई शॉपिंग नहीं होगी, या फिर आपको तीनों दिमाग में आता है? आप मुझे वैसे वॉइस नोट भी भेज सकते हो और फिर देखते हैं कि किसकी कितनी चॉइसेस जो है मैच होती हैं। क्या है आपका आंसर, ए बी सी या डी? व्हाट्सएप करके फटाफट से बताओ। आप मुझे ऑडियो भी भेज सकते हैं 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सो सैटरडे मॉर्निंग का ना एक यूनिवर्सल बैटल होता है, स्पेशली फ्राइडे सैटरडे दोनों ही एक्चुअली. बॉडी कह रही होती है कि आज एक्टिव होना चाहिए, ब्रेन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, और सोफा कहता है कि तुम दोनों मेरी बात सुनो. कतर में रन द डोम का फर्स्ट एडिशन जो है एस्पायर डोम में हो रहा है और आज सुबह 8 बजे से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, रात के 8 बजे तक है. इस इवेंट में ना कॉम्पिटेटिव रेसेस के साथ फन रन्स और कम्युनिटी एक्टिविटीज भी हैं. सो वैसे तो रजिस्ट्रेशन बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो गए थे, आपके बहुत सारे आसपास लोगों ने किया ही होगा, पर मुझे लगता है कि फिटनेस का सबसे ऑनेस्ट वर्जन पता है क्या है, मैं रनिंग के लिए नहीं रनिंग देखने के लिए आई हूं या जा रही हूं. सो व्हाट्सएप पे आप मुझे बता सकते हो कि आपका फेवरेट वीकेंड फिटनेस प्लान क्या होता है, रन, वॉक, जिम या फिर सोफे पे बैठ के कुछ नेटफ्लिक्स और चिल करना. बाय द वे नेटफ्लिक्स से याद आया कि कल बहुत सारी नई नई चीजें नेटफ्लिक्स पर आ गई थी और सोफे वाले बिल्कुल गिल्टी फील मत कीजिए, सोफा भी एक डेस्टिनेशन ही है, फॉर मी तो है ही. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है, जहां पर मैं और आप मिलकर बात कर रहे हैं किताबों की, नेटफ्लिक्स की, मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स की, कतर में होने वाले सारे इवेंट्स की और साथ ही साथ मौसम की भी. सो सैटरडे है, आप मुझे बताइए कि आपके आज के क्या प्लान्स हैं. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

सो दोहा में वीकेंड का मतलब ब्रंच, मॉल या मूवी, लेकिन कतर में एक और एक्सपीरियंस है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज कैमल रेसिंग। आज अगर मैं बात करूँ कैमल रेसिंग की, तो रेस ट्रैक में समर कैमल रेसिंग फेस्टिवल का 5th प्रिलिमिनरी 2 किलोमीटर रेस स्केड्यूल्ड है, राइट? और मुझे पर्सनली ये चीज़ें ना बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं। हमारी जनरेशन के बच्चे मतलब ये बोलेंगे कि वीकेंड पे क्या करना है, नेटफ्लिक्स, और कतर बोलेगा कि कैमल रेस देखने चलो। इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न कतर। और आप मुझे बताओ मेरे व्हाट्सएप पे 3311063 पे कि आपने लाइव कैमल रेस कब देखी है, और देखी भी है कि नहीं, और अगर देखी है तो एक वर्ड में उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा। देखो मैंने तो अभी तक ये एक्सपीरियंस किया नहीं है, एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार कितनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आकर मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किए हैं इन कतर, चाहे वो इस गर्मी को एक्सपीरियंस करना हो, या फिर मॉल के अंदर ही इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करना हो, या फिर बच्चों को जो ये टॉय फेस्टिवल होता है वो एक्सपीरियंस करना हो, या फिर इवन फूड फेस्टिवल्स हो, ये सब मैंने कतर में आके एक्सपीरियंस किए हैं। यू टेल मी कि आपने अगर इस एक्सपीरियंस को लिया है तो आपको कैसा लगा। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और ये है लाइफ मस्त है।

0: मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक इट वाज। आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट जो है वो पेरेंटिंग को लेकर कॉन्वर्सेशन बना हुआ है। क्या बच्चों को ज्यादा टॉयज चाहिए या ज्यादा एक्सपीरियंसेस चाहिए? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। इमेजिन करो, एक बच्चा बड़ा होता है, उसके पास 50 खिलौने हैं, लेकिन दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे याद है पापा के साथ वो फर्स्ट रोड ट्रिप, उसे याद है मम्मी के साथ वो बीच वाला जो टाइम था जहाँ पर उसने बीच पे बहुत टाइम स्पेंड किया था, उसे याद है कि हम किसी नई कंट्री में गुम हो गए थे, उसे याद है कि मेमोरीज का मैजिक क्या है। तो पुराने टॉयज हो सकते हैं लेकिन यादें कभी पुरानी नहीं हो सकती। इसीलिए आज के पेरेंट्स ना बच्चों से सवाल पूछते हैं कि आपको बचपन का सबसे यादगार ट्रिप कौन सा याद है, या फिर आप सबसे ज़्यादा कहाँ पर इंजॉय कर आए थे, बीच पर या पहाड़ों में। आज भी पेरेंट्स के साथ ना कौन सी मेमोरी आपको लगता है कि आपको याद है? बाय द वे, ये बिल्कुल सही बात है कि आज के टाइम पर टॉयज में बहुत कम लोग जो पेरेंट्स हैं वो पैसे बर्बाद करते हैं। उनको लगता है कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दिलाए जाए, चाहे वो मॉल में हो रही एक्टिविटीज हो, पेंटिंग क्लासेस हो, डांस क्लासेस हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी। एक छोटी सी याद जो आज भी आपको याद आ जाती है आपके पेरेंट्स के साथ, बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

यार लोग आपसे पूछते रहते हैं कि आज का क्या प्लान है, पर कुछ नहीं करना भी तो एक प्लान है ना। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो एक सवाल पूछूं, हम वीकेंड को भी ना प्लान क्यों करते हैं? फ्राइडे को डिसाइड करते हैं, सैटरडे को ये करेंगे वो करेंगे, ब्रंच पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, मूवी, फ्रेंड्स, और अगर सैटरडे को कुछ नहीं किया तो लगता है यार वीकेंड वेस्ट कर दिया। लेकिन कभी सोचा है क्या हर फ्री मिनट को प्रोडक्टिव बनाना जरूरी है? कभी कभी सोफे पर बैठकर चाय पीना, खिड़की से बाहर देखना, फेवरेट गाने सुनना, ये भी तो सैटरडे का फील हो सकता है ना। सो बेसिकली क्या होता है, देखो फ्राइडे सैटरडे दो दिन छुट्टी होती है। एक दिन तो आपको लगता है यार दोस्तों से मिलो, शॉपिंग करो, ऐसा वैसा ये वो, बट एक दिन घर पे भी चाहिए यार। सो अगर कल आपने ऑलरेडी ये सब कर लिया है, देन सैटरडे इज फॉर यू, राइट? हम इतने बिजी हो गए हैं कि रेस्ट करते वक्त भी गिल्ट फील होने लगा है। और शायद वीकेंड का असली लग्जरी ये नहीं है कि हम कितना जगह गए और कितने लोगों से मिले, बल्कि ये है कि भाई संडे आने से पहले हम खुद के साथ कितना वक्त बिताए। सो आज सैटरडे चैलेंज बहुत सिंपल है। आज अगर एक घंटे टाइम निकालो तो जिसमें आपको लगता है कि कुछ भी अचीव नहीं करना, बस एंजॉय करना है। सो यू टेल मी कि आपका परफेक्ट लेजी डे कैसा होता है? बेड टाइम, चाय टाइम, मूवी टाइम, लॉन्ग ड्राइव, या बस फोन साइलेंट करके दुनिया बाहर में जाए और आज मेरी छुट्टी है वाला फीलिंग लेना? व्हाट्सएप पे आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव और मैं हूं मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलु बिग फाइव डेज डील्स आर हियर 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स ग्रोसरीज होम अप्लायंसेस मोबाइल्स लैपटॉप टीवीज फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी तो देर किस बात की 5 डेज बिग डील्स बिग सेविंग्स विजिट लुलु हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com लुलु बिग 5 डेज डील्स मिस किया तो
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: सर, स्पोर्ट्स में ना एक बहुत अजीब सी चीज होती है, हम हमेशा स्कोर बोर्ड्स देखते हैं, जीत जाए तो बोलते हैं व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, और अगर हार जाए तो क्या यार क्या खेला है। सो दो दिन पहले 27th ऑफ अगस्त को कतर में चाइना के अगेंस्ट फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर में यहाँ पर अरेना में मैच हो रहा था, ठीक है, और कतर जो है 57-83 से हार गया। लेकिन ये मैच एक बिगर स्टोरी का पार्ट था। सो यहाँ पे बेसिकली अरेना का न्यू बास्केटबॉल कॉन्फिग्रेशन ऑफिशियली ओपन हुआ और एग्जैक्टली एक साल पहले कतर 2027 वर्ल्ड कप काउंटडाउन भी बिगेन हुआ। अरेना में 8,200 फैंस के सामने ये मैच हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 8,200 फैंस थे वहाँ पे। और लाइफ में भी ना कभी कभी एक दिन का स्कोर आपकी पूरी जर्नी डिसाइड नहीं करता, एक हार आपको हारा हुआ या फिर लूजर नहीं बनाती। सो आई वॉज थिंकिंग कि भाई ये कितने इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कितनी सारी मैचेस हो रहे हैं, इवन बास्केटबॉल मैच हो रहे हैं के बाद, उससे पहले जो अंडर 17 वॉलीबॉल मैचेस हैं वो भी चल रहे थे। सो व्हाट्सएप पर आप मुझे एक इंटरेस्टिंग से सवाल का जवाब दो। सवाल ये है कि आपकी लाइफ में वो कौन सी हार थी जो बाद में एक्चुअली ब्लेसिंग निकली, आपको लगा कि यार अगर आप यहाँ पर नहीं हारते या अगर वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते सो आप उस लाइफ के उस टर्न पर पहुँच ही नहीं पाते। सो नाम नहीं बताना अगर तो मत बताओ, लेकिन आप मुझे बताओ, जॉब, रिलेशनशिप, एग्जाम, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। सो यू टेल मी, 3311-1063 इज माई नंबर, दोबारा बता देती हूँ, 3311-1063 इज माई नंबर। हो सकता है किसी और को आपकी स्टोरी से ना कोई होप मिल जाए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस

देखिए वैसे तो हमें पता है कि जो पुरानी बॉलीवुड मूवीज हैं वो आज भी उतनी ही हिट है। आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आपको अभी चूज करना हो न्यू ओटीटी सीरीज या फिर ओल्ड बॉलीवुड मूवीज यू हैव वॉच ऑलरेडी, मतलब दोस्तों के साथ फैमिली टाइम में आपने बहुत बार उन मूवीज को देख लिया है, मतलब न्यू ओटीटी वर्सेस ओल्ड बॉलीवुड मूवीज। मैं जानती हूँ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मूवी चलाओ, डायलॉग मुझे ऑलरेडी याद है, चाहे वो कभी खुशी कभी गम हो या फिर यू नो DDLJ हो, हेरा फेरी हो या अंदाज अपना अपना, मतलब क्या तो मूवीज हैं ये। सबसे फनी बात पता है क्या है, हम मूवी देखते हैं, हम मूवीज के साथ परफॉर्म करते हैं। राहुल, नाम सुना ही होगा आपने, ये डायलॉग तो आपको रटा हुआ रहता है। सो यू टेल मी कि वो एक बॉलीवुड मूवी कौन सी है जो आपने कितनी भी बार देखी हो आप बोर नहीं होते, आपको लगता है कि यार ये तो मैं दोबारा देख सकती हूँ या दोबारा देख सकता हूँ। उस मूवी का फेवरेट डायलॉग भी आप मुझे बता सकते हो, बोल के भेज सकते हो व्हाट्सएप पर 3311063 इज माई नंबर। मैं बेस्ट वंस जो है वो रेडियो पे फटाफट से प्ले करने वाली हूँ। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: और अब आता है आज का सबसे सीरियस क्वेश्चन, बिकॉज मेरे जाने का टाइम हो गया है. बिल्कुल सीरियस, नेशनल इंपॉर्टेंस का सवाल है ये. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. अगर आज आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाय द वे सैटरडे को वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम ही होती है, ना कोई ऑफिस, ना कोई कुकिंग, ना कोई क्लीनिंग, ना कोई ईमेल, ना कोई कॉल, वैसे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ ना कुछ तो होती है, और पैसे की भी कोई टेंशन नहीं है अगर, तो आप आज क्या करोगे? कोई बोलेगा कि यार मैं पूरा दिन सोना चाहता हूँ, और कोई बोलेगा कि यार मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ आज के दिन, और कोई बोलेगा कि यार मुझे शॉपिंग पे जाना है अगर कोई टेंशन नहीं है तो. और एक बहुत ऑनेस्ट सा लिसनर जिसने मुझे एक बार बोला था कि मैं फोन साइलेंट करके पूरा दिन बस बेड पे पड़े रहना चाहता हूँ, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं ही खुद बोल रही हूँ. और ऑनेस्टली रिस्पेक्ट है फॉर यू नो ऐसे लोगों के लिए जो एक्चुअली सच बोलते हैं. तो आप मुझे बताओ कि अगर आप, मतलब अगर आपको पूरा दिन कुछ नहीं करना पड़े तो आप क्या करना पसंद करेंगे, लाइक क्या कैसे स्पेंड करना पसंद करेंगे आप आज का दिन. सो देखते हैं कतर का सैटरडे एक्चुअली कैसा होता है. 3311106 इज माई व्हाट्सएप नंबर. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, और कल मिलते हैं सेम टाइम यानी कि सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर. तब तक के लिए सुपरहिट गानों के साथ एंजॉय करते रहिए रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: वो पाट दे तूड़ा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
2: जदों लग्या तेनू इश्क दरों

0: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: Doha's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू

0: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाओ इस लड़के को।
1: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
0: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
1: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
0: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
1: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
0: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
0: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing. That's

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, और बांध रखी है तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहां पे हम गाने सुनाने वाले हैं, गुनगुनाने वाले हैं, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है। और यही बोलते हुए किक स्टार्ट करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और मैं रिसेंटली ऐसे बैठ के देख रहा था कुछ विंटेज कार्स को। यार क्या मजेदार चीज़ है वो, और दो मिनट के लिए मेरा मन करा कि यार एक विंटेज कार तो ले ही लेना चाहिए। फिर मैंने बैंक बैलेंस देखा तो मैंने सोचा छोड़ो, देख के ही हम एंजॉय कर लेते हैं, मगर कुछ अलग ही चार्म है उनका। और मैंने एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा था जहाँ पे वो बात कर रहे थे, भाई गाड़ियों में तुम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेकर आते हो तो गाड़ियों का चार्म खत्म होता। और वो बंदा एक्चुअली एक बहुत पुराने मर्सिडीज में बैठ के बात कर रहा था, ठीक है। तो कहता था कि जैसे कि अगर मुझे एसी डालना है, अगर कुछ भी करना है, तो ये रहा उसका स्विच, मैं उसे प्रेस करता हूँ, ठीक है। वो स्विच जब ऑन होता है, मुझे आवाज़ आती है, तो मुझे एक अलग फील मिलती है करके। तो वो देख के मुझे भी फील मिलने लगी, मैं सोचा कि भाई यही चाहिए, यही चाहिए। बट एनीवे, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, पुराने गाड़ियों का अलग ही चार्म था। इंडिया में भी अगर हम देखें, अम्बेसडर अगर कोई रोड में दिख जाती है मुझे, तो मैं तो भाई दीवाना हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ यार ये चाहिए, और स्पेशली ब्लैक कलर में। और अगर आपको भी पुरानी गाड़ियाँ पसंद है तो ज़रा मुझे बताइए 3311106 पर मैसेज करके। थोड़ी देर में गानों के उस पार हम आएंगे एक पुरानी गाड़ी के बारे में एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज बेंज W124 के बारे में, जो एक आइकॉनिक ओवर इंजीनियर्ड लग्जरी एग्जीक्यूटिव कार है जिसको 1984 से 1997 तक प्रोड्यूस किया गया था और ये पहली कार बनी जिसको ई क्लास के नाम से मर्सिडीज ने मार्केट किया। ठीक है, स्टार्टिंग में ई क्लास के नाम से मार्केट नहीं किया था, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने ई क्लास के नाम से इसे मार्केट करना शुरू किया। तो इस गाड़ी के ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो है लेक्सस के सेल्स जो है काफ़ी बढ़ रहे थे और मर्सिडीज़ की गाड़ियों की जो डिमांड है वो कम हो रही थी। तो मर्सिडीज वालों ने सोचा कि भाई अपन भी एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे कि लोग दीवाने हो जाएंगे इसके चलाने के बाद, तो लोग पागल हो जाएंगे, बोलेंगे कि भाई यही चाहिए करके। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, 1979 में जब मर्सिडीज ने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो अमेरिका में हमारी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करे, तो उन्होंने W123 के एक लेजेंडरी सक्सेसर के तौर पर इसे विजुअलाइज किया और बहुत सारे बढ़िया फीचर्स इसमें ऐड किए। काफ़ी एरोडायनेमिक शेप है इसका और बहुत ही रिगरस प्रोटोटाइप टेस्टिंग की उन्होंने एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में। और ख़ास बात यह है कि इस गाड़ी को कम्प्लीटली बनाने में इन्होंने अपने राइवल की हेल्प भी ली है। पूरी कहानी सुनने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ W124 मर्सिडीज बेंज के बारे में, ठीक है, जिसको ई क्लास के नाम से फिर हम बोलने लगे। और इस गाड़ी के ओरिजिन के बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे इसको बहुत रिगरसली टेस्ट किया गया था, इसका डिजाइन काफी एरोडायनामिक था और W123 के सक्सेसर के तौर पर इसे लेकर आ रहे थे। और इसको बनाने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि इसका इंजन इतना बड़ा था, V8 इंजन इतना फैट था कि ये मर्सिडीज बेंज के असेंबली लाइन में फिट नहीं बैठ रहा था। तो मर्सिडीज बेंज ने पता क्या किया, मर्सिडीज बेंज ने अपने राइवल्स यानी कि Porsche को कांटेक्ट किया, बोला कि इस गाड़ी को तुम जरा अपने असेंबली लाइन में असेंबल करो, फाइनल प्रोडक्ट जो है हम निकालेंगे करके। तो ऐसे मर्सिडीज बेंज ने अपने राइवल के साथ एसोसिएट करके इस गाड़ी के प्रोडक्शन को कंप्लीट किया। उसके बाद जब अमेरिकन मार्केट में ये गाड़ी आई तो भाई तूफान, क्या बताओ मैं, लोग दीवाने हो गए इस गाड़ी के, अभी तक इस गाड़ी के दीवाने हैं। सोच के देखिए, 1980s में गाड़ी निकली थी और अभी भी इस गाड़ी का चार्म जो है वैसा ही है और काफी अच्छे दाम में जो है विंटेज मार्केट में गाड़ी अवेलेबल भी है। और अगर प्रिस्टीन कंडीशन में गाड़ी अगर आपको मिलती है तो भाई सोच के देखो दाम कितना ज्यादा हो सकता है। और बहुत लोग इसे जो है बहुत ही प्यार से तहजीब के साथ रखते हैं। और अगर इसकी पावर की बात करें तो अनपैरल्ड, उस टाइम पे जितनी भी गाड़ियां निकली थी उससे काफी तगड़ा एक पावर और काफी ज्यादा ओवर इंजीनियर्ड गाड़ी भी है ये। और यही बात बताते हुए, यही कहानी आपके साथ शेयर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: मैच हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
2: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
5: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा लिपोग्राम के बारे में। लिपोग्राम के बारे में बताने से पहले मैं जरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेता हूं। आपने सुना होगा एक नोवेल के बारे में जिसका नाम है कैट्सबी। ये ऐसा नोवेल है जिसमें ई लेटर जो है नहीं है। तो ऐसे लिटरेचर वर्क्स जिसमें कोई लेटर को ओमिट कर देते हैं उसको लिपोग्राम कहते हैं। और गैट्सबी जो है बहुत ही फेमस एक एग्जांपल है जहां पे ई लेटर का जो है यूज नहीं किया गया है। अब लिपोग्राम्स में क्या क्या आते हैं? फुल लेंथ नॉवेल्स आते हैं, पोम्स आते हैं, कंस्ट्रेंट बेस्ड वर्ड गेम्स जो हैं ये भी लिपोग्राम में इंक्लूड होते हैं। थोड़ी देर में गाने के उस पार जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ नोटेबल लिटरेरी लिपोग्राम्स के बारे में। फिलहाल यहाँ पे गाने प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी लिपोग्राम्स के बारे में। लिपोग्राम्स क्या होते हैं, अब कुछ नोटेबल लिटरेरी लिपोग्राम्स के बारे में जरा हम बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक मेंशन किया था गैट्सबी, जिसे अर्नेस्ट विंसेंट राइट ने लिखा है, एक 50,000 वर्ड नॉवल जो है जिसमें ई लेटर का उपयोग ही नहीं किया गया है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे नॉवल का नाम है अवॉइड, इसे लिखा है जॉर्जस पेरेक ने। ये एक फेमस 300 पेज फ्रेंच नॉवल है और इसमें भी लेटर ई को कम्प्लीटली अवॉइड किया गया है। और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गिल्बर्ट अडेयर ने, इन्होंने इसी सेम कंस्ट्रेंट को जो है फॉलो किया और ई लेटर को अवॉइड किया। फिर एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है जिसका नाम है यूनोया, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो है एक यूनिवोकलिक लिपोग्राम है, यानी कि एक चैप्टर में एक ही वोवल का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी चार वोवल्स को कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक चैप्टर लेते हैं तो उसमें सिर्फ ए वोवल के वर्ड्स होंगे और बाकी सारे वर्ड्स जिसमें ई आई ओ और यू आते हैं उन्हें हटा देते हैं। 2001 में जो है ये वर्क आया था। और एक और वर्क है एंडी वेस्ट का, 2002 में निकला था, लॉस्ट एंड फाउंड। ये कंटेम्प्रेरी नॉवल है जो ई को एक्सक्लूड करती है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
0: रेडियो ऑलिव

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है एक चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। 1994 में अगर क्रिकेट के टॉप बॉलर्स की अगर हम बात करें तो नाम आता है शेन वॉन का, सर कर्टली एम्ब्रोस का, वकार यूनिस का, अनिल कुंबले का, वसीम अकरम का और इयान बिशप का। 2001 में अगर हम टॉप बॉलर्स की बात करें तो नाम आता है ग्लेन मैकग्रैथ, शॉन पोलक, एलन डॉलैंड, कोर्टनी वॉश, मुथैया मुरलीधरन और डैरन गोव का। अगर हम 2011 की बात करें तो नाम आता है डेल स्टेन का, ग्रेम स्वान का, जेम्स एंडरसन का, मोने मॉकल का, जहीर खान का और मिचेल जॉनसन का। यानी कि हर तीन डिफरेंट एरा में काफ़ी बढ़िया बॉलर्स, ये ऐसे बॉलर्स हैं जो अपने क्राफ्ट के मास्टर्स हैं, ठीक है, ब्यूटी जिन्हें हम बोलते हैं ना, वैसे लोग, टैलेंटेड लोग, काफ़ी बढ़िया बॉलर्स जो गेम को चेंज कर सकते हैं अपने बलबूते पे। इन तीनों एरा में एक बैट्समैन जो टॉप पे रहा हो पता है कौन था? सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हाँ, 1994 के टॉप बैट्समैन सचिन तेंदुलकर थे, 2001 के टॉप बैट्समैन सचिन तेंदुलकर थे और 2011 के टॉप बैट्समैन सचिन तेंदुलकर थे। यहाँ पे किसी भी प्लेयर के बारे में हम बुरा नहीं बोल रहे, मैं बस ये बता रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर को आजकल के बच्चे जो है समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। जो हमने देखा है, मैंने तो फिर भी थोड़ा कम देखा है, जो मेरे भैया लोगों ने देखा है या फिर जो मेरे पेरेंट्स ने देखा है, वो तो भाई अलग ही लेवल का है। तो जो आजकल के बच्चे सुन रहे हैं, मैं यही बताऊंगा कि भाई सचिन के मैचेस देखो उठा के, तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। और उस टाइम पे क्रिकेट के रूल्स बहुत डिफरेंट होते थे, बॉलर्स को फेवर करने वाले रूल्स होते थे, बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे, DRS नहीं होता था, एक गलत कॉल LBW का अगर दे दिया आउट तो आउट है वो, वहाँ पे फिर कोई अपील की गुंजाइश नहीं है। तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं अभी गेम में, मगर अगर अभी भी सचिन होते तो शायद वो डोमिनेट करते। आपको क्या लगता है बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। और यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉर्नफ्लेक्स का इन्वेंशन कैसे हुआ। आप सभी का स्वागत है एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में, और हम बात करेंगे कॉर्नफ्लेक्स के इन्वेंशन के बारे में। 1894 में डॉक्टर जॉन हार्वी केलॉग जो है वो बैटल क्रीक सैनिटेरियम में एक सुपरिंटेंडेंट के तौर में काम करते थे अपने भाई विलियम कीथ केलॉग के साथ, ठीक है। और वहां पे वो दोनों जो है एक होलसम वेजिटेरियन फूड जो है पेशेंट्स को देने के लिए फिगर आउट करने की कोशिश करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, विल ने गलती से बॉइल्ड वीट को बाहर छोड़ दिया जो काफी स्टेल और फ्लेकी हो गया। अब इसको फेंकना वो लोग नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको बेक किया। और जब बेक किया तो ये काफी सैटिस्फाइंग एक क्रंच के साथ बाहर आया और पेशेंट्स के बीच में काफी हिट हो गया। और फिर केलॉग ब्रदर्स ने जो है इसको दूसरे ग्रेन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, एंड उसके साथ वो आए कॉर्न के रेसिपी के साथ जिसको सब पसंद करते हैं और जानते हैं। और 1906 में केलॉग्स कंपनी बनी और उन्होंने अपना पॉपुलर ब्रेकफास्ट सीरियल जो है बेचना शुरू किया। और यही बात बताते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: SR is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक रील मैंने देखा था ड्रीम होम के बारे में। तो बेसिकली वो एक टिपिकल ओल्ड स्टाइल, ओल्ड फैशन केरला एक होम सेटअप जो होता है ना, वैसा रहता है बिल्कुल। हम नालगेट बोलते हैं, और बिल्कुल जहाँ पे घर जो है एक स्क्वायर शेप में होता है, बीच में एक छोटा सा एरिया होता है, जब बारिश वारिश होती है तो वहाँ पे पानी गिरता है। तो काफ़ी एस्थेटिक और काफ़ी बढ़िया एक एम्बियंस, ठीक है। तो देख के मैं भी सोचा यार, मेरा ड्रीम हाउस अगर मैं बनाता तो मैं कैसे बनाता, ठीक है। मेरे पास थोड़े आइडियाज़ आए, तो मैंने सोचा कि मुझे अपना ड्रीम हाउस जो है वो काफ़ी स्पेशियस सा चाहिए, जिसमें लंबे लंबे हमें विंडोज़ लगा पाए, वो स्लाइडिंग विंडोज़ जैसे ना, और काफ़ी टॉल सीलिंग्स हो, वैसे सब करके। आपका ड्रीम हाउस कैसा बताइए मुझे ज़रा मैसेज करके 3311063 पर, और यही बात बताते हैं हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
4: सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
3: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
4: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
3: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
3: Brought to you by Riyadha Medical Center.
5: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
6: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
3: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज हमें आपको याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे रेडियो ओलिव को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे radioolive.qa सर्च कीजिए। अगर वहां पे आपको फॉलो बटन साइड में दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप हमारे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, हमें सुनते हुए स्टोरी डाल सकते हैं, टैग कीजिए हमें, हम स्टोरी को रीशेयर करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो आपके पास गिफ्ट जीतने के भी मौके हैं। और यही बात याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करे डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
4: लगा और हो जा रिचार्ज
0: Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
4: Olive Recharge
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds The Responsible Jeweler Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath jahan milti hai complete transparency aur bharosa

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं। 3 घंटे बहुत जल्दी बीत गए, बिल्कुल पता नहीं चला, मगर कोई गल नहीं जी। हम आपके साथ वक्त बिताने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए यहीं पर आएंगे। और जाते जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। रेडियो

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

वैसे तो देखिए एक गाना जो है वो मेरे कान में बार बार बज रहा है और वो है ये शाम मस्तानी। वैसे इसको अगर मॉडर्न भाषा में कहें तो जबरदस्त इवनिंग भी कह सकते हैं। वेलकम जी, गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूं। हां जी किद्दा जी, सोडियो 100 किलो प्यार वाली जो आपकी प्यारी सी सिमरन है वो इस वक्त इंडिया में है, मतलब वो निकल चुकी है अपनी वेकेशन मनाने के लिए। तो बस अभी कुछ दिनों के लिए आप और मैं, हम दोनों ही साथ में इवनिंग्स को और ज्यादा जबरदस्त बनाएंगे। हां जी, लेवल मैच करने की पूरी कोशिश करेंगे हम कि आपके एंटरटेनमेंट का लेवल जैसे सिमरन के साथ बना रहता है वैसे ही बना रहे, और मेरे साथ जैसे आप लाइफ को मस्त बनाते रहते हैं वैसे ही हम इवनिंग के टाइम पे अब लाइफ को मस्त बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए बहुत ही अमेजिंग वाले गाने जो है आ गए हैं आपके रेडियो सेट्स पर, तो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इन्हें इंजॉय करते रहिए। एंड आज बहुत सारी अमेजिंग बातें जो है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस बारे में बात करेंगे कि आपका वीकेंड कैसा रहा। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
2: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: आपको वो वाली फीलिंग याद है जब आप जो है कहीं जाने के लिए फुल ऑन तैयार हो रहे होते हो, मतलब तैयार हो गए होते हो, ऑलमोस्ट बस जूते पहनने बाकी रहते हैं और तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और आपके कोई ऐसे रिश्तेदार जो है वो आ जाते हैं जो इतने सालों से आपको कॉल भी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मेरे कोई रिश्तेदार नहीं आए हैं, ये कोल्ड कफ जो है वो आ गया है। मुझे सर्दी इतनी ज़्यादा हो रखी है पिछले एक हफ्ते से और मेरी लाइफ के जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो इस एक हफ्ते में हुए। मेरा बर्थडे आया, उसके बाद हमने इतना अमेजिंग बैक टू स्कूल वाला इवेंट जो है अबू सिद्रा मॉल में वो किया, एंड उसके बाद भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, एंड पिछला जो वीकेंड है यानी कल वाला जो फ्राइडे है वो भी आया, एंड वो भी मेरी इस सर्दी के चक्कर में बेड पे पड़े पड़े निकल गया, मैं कुछ अमेजिंग कर ही नहीं पाई। वैसे तो गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कजिन जो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, यानी आपके इवनिंग्स को बेसिक नहीं जबरदस्त बनाने का बीड़ा उठाया है मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर। अब ये कंधे जो है ये और नाजुक इसलिए हो गए बिकॉज सर्दी बहुत ज्यादा हो रखी है मुझे, तो मेरा तो कुछ ऐसे बताने लायक है नहीं कि मैंने वीकेंड पे क्या किया। सो आप लोगों से पूरी होप है तो जल्दी से फोन उठाइए, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे 3311063 पर कि आखिर आपका वीकेंड जो है वो कैसा रहा है, एंड आज तक मतलब अभी शाम तक का आपका दिन जो है वो कैसा बीत रहा है, अभी तक का दिन कैसा बीता, बाकी कल का क्या प्लान है उस पर भी बात करेंगे हम लेकिन थोड़ी सी देर में। आप स्टे ट्यून रहिए, अमेजिंग वाले गाने आपके लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ, वॉल्यूम बढ़ाओ इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। I'm just a

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलू बिग 5 days डील्स आर हियर। 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेज, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स। और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स। विजिट लुलू हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com। लुलू बिग 5 days डील्स, मिस किया तो डील गई।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिमरन जो है वो एक महीने के लिए ना वेकेशन पे गई हुई है, तो अभी कुछ दिनों तक आप मेरी ही आवाज सुनेंगे इस वक्त। ऐसा नहीं हो ना कि मतलब फिर लोग कंप्लेन करने लग जाएंगे, यार ये सिमरन की आवाज बहुत बदली बदली लग रही है, इनका एक्सेंट भी पंजाबी से अचानक से भोपाली हो गया है। गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी इवनिंग्स को थोड़ा एक्स्ट्रा जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने उठाया हुआ है इन नाजुक कंधों पे। बीड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो यार, बस आपसे ये पूछा था मैंने कि आपका वीकेंड कैसा रहा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि कशिश हमारा जो वीकेंड है वो आपके वीकेंड से ज्यादा कुछ अलग नहीं रहा, क्योंकि हमने भी पूरा दिन जो है वो घर के काम करने में निकाल दिया एंड जब डिसाइड किया कि चलो अब बाहर जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी तब तक जो है वो शाम आ चुकी थी। लेकिन शाम भी बहुत ही अमेजिंग थी कल, क्योंकि चांद जो था वो अपनी एकदम फुल पे था, बहुत मजा आया। मैंने सच में अपनी इंस्टाग्राम जैसे ही खोला ना, सारी स्टोरीज पे जितनी भी कतर के लोग थे उन सब की स्टोरी पे चांद दिख रहा था मुझे। वाओ गाइस, मजा आ गया। अपनी फोटोग्राफी स्किल्स जो आपने दिखाई है, मजा आ गया। वैसे फोटोग्राफी स्किल्स अगर आप लोग भी चाहें तो दिखा सकते हैं मुझे जल्दी से, जो है अगर आप कहीं पे खड़े हुए हैं, सिग्नल पे खड़े हैं या कहीं पे बाहर हैं जहां पर आप फोटो खींच सकते हैं, तो प्लीज माहौल कैसा हो रहा है, मौसम कैसा हो रहा है, उसकी जरा फोटो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि सन यू नो सन डाउनर वाली फोटोज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो जल्दी से इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में जो है मुझे बाहर के नजारे देखने का मौका दे दीजिए जल्दी से। 3311063 पर अपना फोन उठा के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अमेजिंग वाली पिक्चर्स की, या फिर मौसम जो है वो कैसा हो रहा है। बाकी मौसम से याद आया कि थोड़ी सी देर में इस मौसम के बारे में भी बातचीत करनी है। सो वॉल्यूम बढ़ा के गाने इन्जॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

अभी ना गला खराब होने की वजह से मेरा चाय का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पता नहीं किसने मुझे बचपन में बता दिया था कि गरम गरम अदरक वाली चाय पीने से ना गला ठीक हो जाता है, सर्दी ठीक हो जाती है, तो मैंने यही मान के रखा है। उसके बाद जितने भी लोग मुझे कुछ भी बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेलकम जी, गुड इवनिंग, 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने इस नाजुक कंधों पर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नाजुक कंधों पर उठा ली है। सो फिलहाल मैं जो है चाय पीने के लिए अपने बिल्डिंग से अभी नीचे गई थी एंड यू नो बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा एसी वाला रहता है, एसी रहता है, और जैसे ही मैंने कदम बाहर बढ़ाए वैसे ही मेरे चश्मे पे जो है ऐसे एक लेयर जम गई जिसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है वापस, एंड एक स्टार जो था सुहेल उसके आने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस रहा और अब जो है लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक जो है जाएगा। बाकी मौसम तो देखो यार ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन हल्का हल्का सा फील हो रहा है कि हाँ देखो पिछले अभी एक महीने से थोड़ी सी हालत बेहतर है ना, अब आगे आगे देखो खतर का मौसम कैसे अमेजिंग होने वाला है। मैं तो ना इसी का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से अच्छा मौसम आए और मेरी जो है शाम जो है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाए, मैं आफ्टरनूनस में भी जो है जाकर मीना पोर्ट पे या दोहा पोर्ट पे जो है बैठ सकूं। बाकी आपकी वो इवनिंग जो है सनसेट वाली लोकेशन कौन सी है फेवरेट वो मुझे ज़रूर से बताइएगा 3311063 पर। एंड बहुत सारे लोग जो है मुझे फोटोज़ भेज रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप भी भेजिए 3311063 पर मुझे फोटोज़ कि यार आखिर बाहर का मौसम अभी कैसा हो रहा है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
2: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning.

यार देखो, इंडिया से कतर आने के बाद मुझे मेरे मम्मी पापा की तो याद आती है, कभी कभी आती है, लेकिन साथ में ना मुझे मेरे छोटू छोटू जो कजिन्स हैं उनकी बहुत याद आती है, बिकॉज उनके साथ ना मैं बहुत ज्यादा खेलती थी, फन करती थी, मस्ती करती थी, एंड मुझे ना उनके साथ उनका होमवर्क करने में, उनके कलरिंग शीट्स जो है वो फिल करने में बहुत मजा आता था। और वैसा ही मजा जो है अभी मुझे आया था इस थर्सडे को अबू सिद्रा मॉल में। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुजन, शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा जो है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठाई हुई है। अब देखो यार, अबू सिद्रा मॉल में हमने बैक टू स्कूल इवेंट किया, जहाँ बहुत ज्यादा मजा आया, बच्चे आए एंड अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे थे, एंड वो जो है बढ़िया कलरिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे जैसे मैं कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। एंड यार मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है जब आप इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चों को जो है इतनी फोकस के साथ कुछ काम करते हुए देखते हो। मुझे लगता है यार मेरे लाइफ का फोकस कहां गायब है। सो ऐसे बहुत सारे इवेंट जो है हम अभी करने वाले हैं, उसके सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो है रेडियो ऑलिव का इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो जल्दी से जाके फॉलो कर लेना है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर लो। एंड बाकी अगर आपको भी अपने बच्चे को फन फॉलिक मस्ती और मजाक कराना है, एंड साथ में चाहते हो कि यार उनको कुछ नया सीखने को भी मिले, तो उनके लिए भी कुछ बहुत अमेजिंग चीज है जो मैं लेकर आ गई हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में। सो बस आपको क्या करना है, अपने रेडियो सेट से एकदम चिपक के बैठे रहना है, स्टे ट्यून रहना है और अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करने हैं आपकी कशिश के साथ, और कहते रहना है जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलू बिग 5 days डील्स आर हियर 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स ग्रोसरीज होम अप्लायंसेस मोबाइल्स लैपटॉप टीवीज फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी तो देर किस बात की 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स विजिट लुलू हाइपरमार्केट्स या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com लुलू बिग 5 days डील्स मिस किया तो डील गई रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है कैसे समझाऊं इस लड़के को
2: उफ, सुबह शाम बस यही टेंशन बच्चों को लेक्चर नहीं हम देंगे फुल ऑन फन बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
5: ਸਸਿਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ
6: ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਵਨਿੰਗ सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: मेरे ना मम्मी पापा को जब मैं कतर आ रही थी तो काफी स्ट्रेस हो रहा था, काफी टेंशन हो रहा था कि यार ये ना बात बात पे बीमार हो जाती है, इसकी इम्यूनिटी काफी वीक है, तो हम इसे भेज देंगे वहां पे, हॉस्पिटल मिले ना मिले, डॉक्टर मिले ना मिले, और पता नहीं कितना एक्सपेंसिव हो मेडिकेशन। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मैंने उन्हें जब बताया कि हमारे पास जो है QID है, एंड QID के बाद जो है मेडिकेशन कितना इजीली मिल जाता है आपको, दवाइयाँ कितने अच्छे एक रीजनेबल रेट पर जो है वो मिल जाती है, बाकी एक जो वेटिंग टाइम था किसी भी स्पेशलिस्ट से मिलने का 58 डेज का, वो भी कम हो गया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफर, मैं हूँ आपकी कसोशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ आपकी इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाई हुई है। अब देखिए यार, HMC ने जो है रिड्यूस कर दिया है स्पेशलिस्ट से मिलने यानी अपॉइंटमेंट मिलने का जो टाइम था, जो पहले 58 डेज का था, वो अब जो है 16 दिन यानी 16 डेज का हो गया है। तो यानी अगर आप एक कोई पेशेंट है जो स्पेशलिस्ट से मिलना चाह रहे थे, मेडिकेशन लेना चाह रहे थे, तो अब आपको अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी मिल जाएगा। तो कंग्रेचुलेशंस, अब आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे पाओगे एंड स्पेशलिस्ट से भी इजिली मिल पाओगे। मैं हूं आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने आप सबसे जो है फोटोज मंगाई थी. अभी इतनी सारी फोटोज जैसे ही चैट खोला ना तो आई मेरे पास. वेलकम जी, गुड इवनिंग. 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी इवनिंग्स को यानी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठाई हुई है. अब मैंने जैसे ही चैट खोला ना वैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इतनी देर पहले फोटोज मंगाई थी एंड लोग फोटोज भेजे जा रहे हैं और मैं उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हूँ. सो सबसे पहले तो अली जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी सनसेट की फोटो जो है वो मुझे भेजी अपनी कार से. थैंक यू सो मच अली जी, क्या मस्त ड्राइव वाला व्यू मिल रहा है आपको. उसके बाद शीबा जी ने भी जो है मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रीज की फोटो भेजी है एंड ग्रास भी दिख रही है मुझे यहाँ. मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ गई नहीं हूँ, तो शिवा जी मुझे प्लीज़ बताइएगा ये कौन सी जगह है. एंड असलम जी ने भी मुझे एक बहुत ही क्यूट जो है फोटो भेजी है जिसमें उनके बेबी का हाथ दिख रहा है एंड ये कार में बैठे हुए हैं. सो थैंक यू सो मच. आप लोग जो है ड्राइव सेफ कीजिए, पानी पीते रहिए एंड मुझे जो है सुनते रहिए. अमेजिंग वाले गाने जो है वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी. बाकी बहुत अमेजिंग सारी कॉन्वर्जेशन के लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा यहीं पर आपकी कशिश के साथ. तो वॉल्यूम बढ़ाओ, गाने एंजॉय करो, बाकी मैं आती हूँ. जरा पानी पी के गला खराब हो रहा है ना मेरा. जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Ready? To learn?
2: Yes.
1: To play?
2: Absolutely.
1: To grow?
2: With Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।
0: क्या है?

0: मस्त बनाने के लिए, आपकी इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने अपने इन नाजुक कंधों पर जो है वो संभाल रखी है। भले ही मुझे कितना भी कोल्ड हो, कितना भी कफ हो जाए, कितना भी जो है मुझे सर्दी हो जाए, लेकिन आपकी इवनिंग को जबरदस्त बना के रहूंगी मैं। अब देखिए यार, बात हम कर रहे थे बॉडी के जो है फैट इंक्रीज होने की, भले ही आप कितनी भी परफेक्ट डाइट ले रहे हो। सो रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर आपको सही नींद नहीं मिल रही होती, यानी आप एक प्रॉपर स्लीप जो है वो नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है वो आपके फूड को फैट में कन्वर्ट करना जो है शुरू कर देती है, जिसके वजह से आप अनहेल्दी फील करते हो और आपकी बॉडी में जो है फैट बढ़ जाता है। सो देखो, डाइट आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम पे सोना एंड टाइम अच्छे टाइम के लिए सोना भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर स्लीप करो आप, उससे भी आपको अनहेल्दी फील होगा, जो मुझे हो रहा है, बिकॉज कल जो है मैं बहुत ज़्यादा सो गई हूँ, ज़्यादा सो गई मतलब हद से ज़्यादा सो गई। सो ये भी नहीं करना है, लेकिन हाँ मतलब 8 घंटे 6 घंटे की नींद तो देखो मैंडेट है, उतना तो लेना ही है, वरना 2-4 घंटे की नींद में तो मुझे नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं एक दिन जो है अपने शावर हेड को जो है ऐसे कान पे लगा के पूछ दे, हेलो मम्मी हेलो। सो अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो से, पर इन्हें एंजॉय कीजिए। मेरे जो है कोल्ड की वजह से मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, मैं कुछ भी बोल रही हूँ अब। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जी ओपन दास
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Hour. Yeah,

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी.

मेरे बर्थडे को ना अभी एक हफ्ता ही बीता है एंड मुझे जो है अपने अगले बर्थडे की जो है टेंशन होनी शुरू हो गई है। मैं लोगों को वीडियोस भेजना शुरू कर चुकी हूँ कि आपने इस बर्थडे पे तो मुझे कुछ खास नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट बर्थडे पे आप मुझे ये दे सकते हो, या आप मुझे जो है ये गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, या आप मुझे इतना कैश दे सकते हो, या आप जो है मुझे ये वाला जो डाइसन का जो हेयर स्ट्रेटनर है ये गिफ्ट कर सकते हो। लालची हूँ मैं थोड़ी सी, देखो 106.3 रेडियो आर एफ पर मैं हूँ आपकी कसोशन शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग को जो है जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर जो है उठा रखी है। अब देखिए यार, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट की हम बात कर रहे थे तो इंस्टाग्राम स्क्रोल करते करते एक वीडियो मेरे सामने आया जहाँ पर एक लड़का है, उसका 30th बर्थडे था एंड उसकी बहन ने उसे बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया। उसकी बहन ने 45 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो उस पर बनाई एंड उसे ऐसे ही रैंडमली दिखाई कि यार चलो हम मूवी देख रहे हैं तुम्हारे बर्थडे पे, एंड उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो जो मूवी देखने वाले हैं वो उसी के बारे में है। यार देखो, इतने एफर्ट डालने वाले सिबलिंग जो है वो कहाँ मिलते हैं। मेरे भाई से तो मैं मांगू तो वो मुझे पानी नहीं ला के देता है। मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने जो है यार आपकी रेडियो से पर वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय करो। अभी बहुत सारी बातें करनी जो है वो बाकी हैं। चलो जी गाने सुनते रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
2: Radio Olive, I'm a number one.
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: देखो मुझे ना कतर में 6 महीने हो चुके हैं अब, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं अपनी और आपकी कतर के बारे में जो जनरल नॉलेज है उसको टेस्ट कर लूं। इतना जो वीकेंड पे आप घूमते हो, मुझे भी तो पता चले कि आपको कतर के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो बस इसीलिए वेयर इन कतर वाला कॉन्टेस्ट जो है वो अब हम खेलने वाले हैं। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूं आपकी कशिश, और आपकी बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इन नाजुक कंधों पर जो है वो उठा रखी है, एंड आपके लिए जबरदस्त इवनिंग शो मैं लेकर आ गई हूं। अब देखो यार, अब जो करना है वो मैं आपको बताती हूं। सो आपको जो है सिर्फ मुझे मैसेज करके ये बताना है कि जिस जगह का डिस्क्रिप्शन मैं आपको देने वाली हूं वो जगह एक्चुअल में क्या है, मतलब आपको बस लोकेशन का नाम मुझे बताना है। सो ये जो लोकेशन है ये एक मॉल के पास है, एंड ये एक बहुत बड़ा टावर है, एंड इसमें मतलब एक बहुत बड़ी मतलब लार्जेस्ट यू नो कर्व स्क्रीन जो है वो इस टावर पे लगी हुई है, एंड बस आपको मुझे ये बताना है 3311063 पर कि ये मैं किस जगह की बात कर रही हूँ कतर में। देखो बहुत इजी डिस्क्रिप्शन है, अब इससे ज़्यादा मैं इजी करके बता ही नहीं सकती। मैंने तो कोई बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल ही नहीं किया, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं नए नए कतर में आए हुए लोगों को, बिल्कुल वैसी आपको बताया मैंने कि सो बताइए मुझे कि ये ऐसी कौन सी जगह है जो किसी मॉल के पास है, एंड एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग टावर है, एंड उसमें जो है एक बहुत बड़ी कर्व LED जो है वो लगी हुई है, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। ओके सो बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके कि आखिर ये कौन सी जगह है। अपनी नॉलेज जरा फ्लेक्स कीजिए यार। मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए सीओ बिंदा।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
1: द वेट इज फाइनली ओवर बी रेडी टू शॉप
3: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

तो देखिए जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि कतर में वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर एक मॉल है एंड उसी के पास एक ऐसा बड़ा सा बिल्डिंग टावर है जहाँ पर एक कर्व एलईडी जो है वो लगी हुई है एंड इट इज द बिगेस्ट कर्व्ड एलईडी। बताइए मुझे, ये तो मैंने सवाल किया था, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है, तो जवाब जो है वो जानने का वक्त आ गया है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ मैं। एंड बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है मुझे। हाँ जी, आयशा जी ने सही जवाब दिया है, असलम जी ने जवाब दिया है मुझे, नताशा जी ने भी जवाब दिया है, एंड सबका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन जवाब मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप लोगों को एक और मौका देती हूँ मैं। आपको बस मुझे इतना बताना है कि ऐसी कौन सी जगह है कतर में जहाँ पर एक मॉल है एंड उस मॉल के पास में एक बहुत बड़ा टावर है, बिल्डिंग टावर है, एंड उस टावर पे वर्ल्ड की बिगेस्ट कर्व एलईडी है। बताइए मुझे, स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन जो है वो उस टावर पे है। 3311063 इज द नंबर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने सबसे पहले जो है मुझे सही आंसर दे दिया है उन लोगों को, पर आप लोगों को भी एक मौका जो है मैं दे रही हूँ। बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
2: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

अरे आपको कैसे पता कि मैं एस्पायर टायर की बात कर रही हूँ? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कसुजन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने इस नाजुक कंधों पर जो है उठा कर रखी हुई है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर एक मॉल है और उसके बगल में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग टावर है जहाँ पर वर्ल्ड की बिगेस्ट कर्व LED स्क्रीन जो है वो हमें देखने को मिल जाती है, एंड आप सबने एस्पायर टावर कह के बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। थैंक यू सो मच, एंड जितने भी विनर्स हैं वेरी गुड, आप कतर को अच्छे से जानते हैं, लेकिन रोज मैं आपके लिए एक ऐसी लोकेशन जो है वो लेकर आने वाली हूँ, सो अब आपका जो है चैलेंज जो है वो आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। देखो फिलहाल जो है अमेजिंग वाले गाने वेट कर रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो और बहुत सारी चटपटी बातें जो है वो अभी करनी बाकी है। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
1: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
2: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

यार देखो, हर रोज मैं 10 बजे सुबह आया करती थी लाइव मस्त है शो में, आपको एंटरटेन करने के लिए, आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए। लेकिन अब अगले कुछ दिन जो है आपकी इवनिंग्स को जबरदस्त बनाऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेगमेंट्स आपको पसंद हैं मेरे शो में वो मैं नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स फैशन की बात और बॉलीवुड की बात कशिश कैसे ना करें। वेलकम जी, गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ओलिव पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग। अब देखो यार, मैं आपको बताने वाली हूं 5 ऐसी मूवीज आपको रिकमेंड करने वाली हूं जो एज अ कपल आपको जरूर देखनी चाहिए। सो इन बॉलीवुड मूवीज का क्या है ना कि ये बहुत कॉमन है, आपने ये सब देखी होंगी, लेकिन अपने पार्टनर के साथ बैठकर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना लाइफ के लिए उनका प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर्स के डिसीजन पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको भी समझ आएगा कि अच्छा हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो ये भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। सबसे पहली मूवी जो है वो है बैंड बाजा बारात, जहां पर ये जो दोनों एक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि यार हमें तो प्रोफेशनल रहना है लेकिन रह नहीं पाते हैं। सो इस पर आपका क्या टेक है, आपके पार्टनर का क्या टेक है, ये काफी कुछ जो है बताता है उनकी पर्सनालिटी के बारे में। बाकी ये जवानी है दीवानी इज अ मस्ट वॉच, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो है अगर क्लियर करना है कि यार करियर को ये इंसान कितनी प्रायोरिटी देता है, फ्रेंड्स को कितनी देता है, फैमिली को कितनी देता है, सो एक बार ये मूवी साथ में जरूर आपको देखनी चाहिए। उसके बाद टू स्टेट, ये जो है मेरा पर्सनल एक फेवरेट जो है मूवी है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे क्लैशेस हैं फैमिली के साथ एंड करियर के साथ, सो इससे ना काफ़ी कुछ आपको अपने पार्टनर की पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा। चेतन भगत की जो बहुत फेमस नॉवल है टू स्टेट्स, उनके उससे इंस्पायर्ड ही मूवी है, एक बार जरूर से देखना। एंड फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पानी पी के आना चाहिए, सो मैं जाती हूँ पानी पी के आती हूँ, बाकी की जो दो मूवीज हैं वो मैं आकर बताऊंगी। फिलहाल गाने जो है एंजॉय करते रहिए आप 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: तो देखिए जी, पानी मैंने पी लिया है और आपको भी ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से पानी की एक सिप ले लीजिए अगर बॉटल आपके पास में है तो। वेलकम जी, गुड इवनिंग, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब जो है ब्रेक पे जाने से पहले और कुछ गानों से पहले जो है हम बात कर रहे थे ऐसी मूवीज की जो आपको एक बार अपने पार्टनर के साथ जरूर देखनी चाहिए। सो ऐसी 5 मूवी मैं आपको रिकमेंड कर रही थी। सबसे पहले मूवी मैंने आपको बैंड बाजा बारात बता दी थी, उसके बाद ये जवानियां दीवानी बताई थी, एंड 2 स्टेट्स भी एक अच्छा पिक हो सकता है अपने पार्टनर को जानने के लिए कि लाइफ के लिए उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है। अब बाकी 2 और मूवीज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो है जब वी मेट। इम्तियाज अली की मूवी को आप कभी अपने पार्टनर के साथ स्किप कर ही नहीं सकते, आपको देखनी जरूर ही है। सो इससे जो है कैरेक्टर्स के फेर आपको पता चलेंगे कि कैसे रिएक्ट करता है आपका पार्टनर किस सिचुएशन में। सो जब वी मेट भी आप अपने पार्टनर के साथ जरूर से देखिए, एंड देन तमाशा जो है वो भी आपको देखनी चाहिए। एज आई सेड, मतलब इम्तियाज अली की मूवी को कोई स्किप कर ही नहीं सकता। सो तमाशा इज ऑल्सो समथिंग जो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप के स्टार्ट में आपको हमेशा लगता है कि ओ दिस इज द पर्सन और यही इंसान है जिसे जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताऊंगा, बट फिर जो है चीज़ें बदल जाती हैं, वो जो है इंसान वो नहीं रहता जो वो पहले हुआ करता था। सो ये मूवी जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी उनको समझने में। एंड अब बोनस मूवीज़ भी आपको बता देती हूँ, वेक अप सिड, हम तुम, ये कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो आप एक बार देखेंगे ना तो आपको अपने पार्टनर का एक नया रूप जो है वो पता चलेगा और फन है, मतलब सो डेट आइडिया के लिए अच्छी है। ये सारी मूवीज़ अगर आपने अपने पार्टनर के साथ देखी हुई हैं तो मुझे ज़रूर से बताइए 3311063 पर। एंड बाकी अगर ऐसी और रिकमेंडेशंस चाहिए तो भी बता दो यहीं पर आकर, 3311063 इज़ द नंबर। मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इन्हें वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: Ready? To learn,
1: yes.
0: To play,
1: absolutely.
0: To grow,
1: with Maserati.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैजराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ.
1: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स.
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैजराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
3: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
4: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
3: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
5: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग. सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास.
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि स्कूल में अभी भी नॉर्मल इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है। अब तो स्कूल में मुझे ऐसा लगता है कि जेन जी इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में तो वही यूज हो रही है। वेलकम जी 106.3 रेडियो वाले पर, मैं हूँ आपकी कसुर, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बीड़ा जो है वो मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठाया हुआ है। अब देखिए यार, जेन जी डी कोडेड में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ड की जो काफी पहले से यूज तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा एक वर्ड हम काफी यूज करते हैं। सो जब आप एक फोटो ले रहे हैं एंड कोई इंसान एफर्टलेसली बहुत अमेजिंग दिख रहा है फोटो में, कि उसके सिवा किसी के तरफ नजर ही नहीं जा रही है उस फोटो में, तो उसको कहेंगे फोटो मॉगिंग। सो नेक्स्ट टाइम जब आप जो है सबको एकदम आप अच्छे दिख रहे हो फोटो में एंड सबकी नज़र सिर्फ आपके ऊपर जा रही है फोटो में, सिर्फ आप मेन फोकस में हैं, तो आप कह सकते हैं कि ओ माय गॉड आई एम फ्रेम मॉगिंग। बस ये कह दो, आप उनको समझ आ जाएगा कि आप जेन जी हो। बाकी मिलेनियल्स जो जेन जी वर्ड यूज कर रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू क्लॉक इट। बाकी ऐसे ही और जेन जी वर्ड्स जो है, जेन जी स्लैंग्स जो है, वो मैं आपको बताऊंगी, जरूर से बताऊंगी, तो उसके लिए आपको बस स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा 106.3 रेडियो एलएफ पर। बाकी आपका सैटरडे कैसा गया ये मुझे जरूर से बताइएगा 3311063 पर। बाकी बहुत सारी बातचीत अभी करनी बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड रहिए, वॉल्यूम बढ़ाकर गाने एंजॉय करते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ जी, वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का। आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे जबरदस्त इवनिंग, मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखो यार, वैसे तो आप हर रोज मेरे साथ लाइफ मस्त एंजॉय करते हो, लेकिन अब अगले कुछ दिन आपको मेरी आवाज शाम को 5 बजे से जबरदस्त इवनिंग में सुनाई देने वाली है। सो कितना अच्छा लगा आपको मेरे साथ जो है अपनी शाम बिताकर, जरूर से बताइएगा मुझे 3311063 पर। एंड कल से हम फुल फ्लेज्ड जो है बातचीत जो है जारी रखेंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या है जो आप सुनना चाहते हो जबरदस्त इवनिंग में, बॉलीवुड के बारे में, क्रिकेट के बारे में, फैशन के बारे में, सारे सेगमेंट जो है हम आपके हिसाब से एकदम डाल देंगे। बाकी जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, एंड सुबह जो है सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अगर मेरी याद सताए तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर आपको सभी आरजेज जो है वो मिल जाएंगे। बाकी 3311063 नंबर तो याद ही हो गया होगा अब आपको मेरा, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।
2: Here we go.

0: खाना खत्म, पैसा हजाम।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Olive 106.3 FM Gio Bendaz. 106.3.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास। चांदनी

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.